मेरा सुकून मिला है जब उस टाइम मेरी बात हुए, हजार रात में वह भी एक रात हुए, आंख उठा के देखे जब वह मेरे को नहीं, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए, वह एक पल भी पूरी कायनात हुए।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: आप सुन रहे हैं SBS Hindi. मेरा नाम है नबील और एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वरुणचुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. आज के शो की शुरुआत होगी फुटबॉल के उस पहलू से जो सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है. माफ करिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच हम जानेंगे कि कैसे फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर में लोगों को जोड़ने, समावेशन बढ़ाने और समुदायों को मजबूत करने का जरिया बन रहा है. इसके बाद सुनेंगे रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सेवरमन के साथ खास बातचीत का दूसरा हिस्सा. कल के शो में हमने इस चर्चा का पहला भाग आपके लिए प्ले किया था और आज उसका दूसरा हिस्सा जो बाकी बातचीत है वो हम आपके लिए प्ले करेंगे. फिर एक रिपोर्ट उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, ईवी अपनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या जानना ज़रूरी है, इस पर हम नज़र डालेंगे. और अंत में भारत से एक प्रेरणादायक कहानी. बेंगलुरु के एक युवा ने अपने पेट डॉग को समय पर खून ना मिलने के बाद एक ऐसी पहल शुरू की जो आज कई शहरों में पशुओं के लिए ब्लड डोनर्स को जोड़ने का काम कर रही है. उनकी इस अनोखी मुहिम के बारे में जानेंगे की आखिरी रिपोर्ट में जो आपके लिए लेकर आएंगे फैसल फरीद. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी और ऐसी बात है गाने भी आपके लिए प्ले करेंगे बीच बीच में. लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं आज की खबरें, आज की ताज़ा खबरें न्यूज फ्लैश में. मंगलवार 16 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने यूनाइटेड किंगडम की सराहना की है. यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि वो इस प्रतिबंध को और आगे बढ़ाएगा ताकि बच्चों और युवाओं को सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके. YouTube, Snapchat और Meta, जो Facebook और Instagram की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री केयर स्टैमर के इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि इसका युवाओं पर उल्टा असर पड़ेगा. इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर भी कार्रवाई करेंगे जहां बच्चों को अनजान लोगों से बातचीत करने की सुविधा मिलती है. ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी ACTU ने उन टैक्स रिफॉर्म्स का समर्थन किया है जो अभी सेनेट इंक्वायरी का विषय है. लेबर सरकार द्वारा कैपिटल गेन्स टैक्स और नेगेटिव गियरिंग पॉलिसी में किए गए बदलाव एक बिल का हिस्सा है जिस पर आलोचकों का कहना है कि इसे बिना पर्याप्त जाँच के संसद से जल्दबाजी में पारित किया गया. ACTU के असिस्टेंट सेक्रेटरी जोसेफ मिशेल ने कहा है कि ये बदलाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर्स को फ़ायदा मिल रहा था जबकि फर्स्ट होम बायर्स को नुकसान हो रहा था. मिडिल ईस्ट में कई महीनों से चल रहे युद्ध के कारण बढ़ती इन्फ्लेशन के बीच सरकार पीस डील के अर्थव्यवस्था पर असर देखने का इंतजार कर रही है. इन्फ्लेशन अभी भी RBA के टारगेट बैंड 2-3% से ऊपर बनी हुई है. वित्त मंत्री केटी गलहर ने ABC के न्यूज़ ब्रेकफास्ट को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पीस नेगोशिएशंस का

0: नाम भविष्य में सेंट्रल बैंक के फैसलों को प्रभावित करेगा। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में ऑस्ट्रेलिया में ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेज से मरने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पहली बार एक ही साल में अनइंटेंशनल ड्रग रिलेटेड डेथ्स 2000 से अधिक हो गई हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेनिंगटन इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एनालिसिस में पाया गया है कि ये संख्या एक साल में 10% की बढ़ोतरी दिखाती है। पेनिंगटन इंस्टीट्यूट के CEO जॉन रियान ने कहा है कि देश अब स्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे गंभीर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में से एक बन चुकी है। G7 लीडर्स आज और कल होने वाले बैठकों में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित पीस डील के बारीक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यूरोपियन देशों ने मिडिल ईस्ट में संघर्ष समाप्त करने के समर्थन की बात कही है, लेकिन साथ ही ये भी दोहराया है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोका जाना उनकी प्राथमिकता है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ मीडिया अपीयरेंस में अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील पहले ही साइन हो चुकी है और इसकी ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नेवल पैसेज के लिए किसी टोल की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने बातचीत से जुड़े आगे के विवरण पर कुछ भी बताने से इंकार किया है। G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन में फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। वहीं इसी समिट में गेस्ट नेशंस के तौर पर ब्राजील, इजिप्ट, इंडिया, कीनिया, साउथ कोरिया, खतर, यूक्रेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल हैं। और अब खबर भारत से। भारत ने डीजल और एविएशन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले विंडफॉल टैक्सेस में बढ़ोतरी की है, जबकि पेट्रोल पर ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी बयान के अनुसार डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 13.5 रुपये था। वहीं ATF यानी एविएशन टर्बिन फ्यूल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 9.5 रुपये से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। ये नई दरें 16 जून से शुरू होने वाली अगले 15 दिन की अवधि के लिए लागू होंगी। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले की तरह 1.5 रुपये प्रति लीटर ही बनी रहेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू इस्तेमाल यानी डोमेस्टिक यूज के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा ड्यूटी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। न्यूज़ फ्लैश के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो की पहली रिपोर्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूछ लेते हैं आज का सवाल। आज का सवाल एक्चुअली पर्सनली जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे था और मैंने मेलबर्न से एडिलेड की एक रोड ट्रिप की, जिसमें कई छोटे छोटे शहरों पर रुक के कई खूबसूरत जगहें देखी और रियलाइज़ किया कि मेलबर्न और सिडनी जैसे बड़े बड़े रौनक भरे चकाचौंध शहरों में तो एक अलग मज़ा है, लेकिन जो आपके रीजनल एरिया हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी भी बड़ी यूनिकनेस है। और इसका एक बहुत अच्छा खूबसूरत मुझे एग्जांपल मिला माउंट गैम्बियर में, जो बिल्कुल मेलबर्न और एडिलेड के बीच में पड़ता है और बड़ी वॉल्केनिक कहानी है इसके पीछे, कैसे वहाँ कुछ लेक्स बने। तो सवाल आज का यह है कि आप बताइए कि आपका फेवरेट रीजनल इलाका या फिर कोई भी ऐसे छोटा इलाका ऑस्ट्रेलिया में जो आप घूमे हों और आपको बड़ा पसंद आया है और हमारी ट्रैवल लिस्ट में होना चाहिए, वो क्या है। 04397997667 हमारा नंबर है। आज अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा जहाँ शायद आप घूमने गए हों या घूमने जाना चाहते हों। 04397997667 आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। तब तक हम पहली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। ये रिपोर्ट है फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने फुटबॉल को एक बार फिर सुर्खियाँ में लाया है, लेकिन खेल के मैदान से परे फुटबॉल लोगों को जोड़ने, समावेशन बढ़ाने और समुदायों को मजबूत बनाने का भी माध्यम बन रहा है। प्रवासी समुदायों से लेकर स्थानीय क्लबों तक ये खेल अपनेपन और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा दे रहा है। इसी विषय पर यह रिपोर्ट आपके लिए लेकर आ रही हैं भव्या पांडे।
1: दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया में एक बार फिर फुटबॉल चर्चा के केंद्र में है। नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ। और फीफा विश्व कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए तुर्की को 2-1 से हराया है। कनाडा के वैंकूवर स्थित बीसी प्लेस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में युवा खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने न सिर्फ टीम को जीत दिलाई बल्कि ऑस्ट्रेलियाई फुटबॉल के भविष्य को लेकर भी नई उम्मीदें जगा दी हैं। इस जीत के सबसे बड़े नायकों में 20 वर्षीय नेस्टरी इराकुंडा रहे जिन्होंने मैच के 27वें मिनट में शानदार गोल कर ऑस्ट्रेलिया को बढ़त दिलाई। इसके साथ ही वे विश्व कप में गोल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि बड़े स्टेडियम की चमक और ग्लोबल हेडलाइन से दूर ये खेल कुछ शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीकों से समुदायों को जोड़ने, पहचान बनाने और सामाजिक एकता को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति और पेशेवर फुटबॉलर जॉर्ज वीह के अनुसार फुटबॉल एक सार्वभौमिक भाषा है जो लोगों को उनकी राष्ट्रीयता, संस्कृति और विश्वास से परे जोड़ती है। और ऑस्ट्रेलिया में यही विचार एक नई SBS ऑडियो सीरीज ब्यूटीफुल गेम चेंजर्स के जरिए सामने आ रहा है, जिसमें 12 ऐसी कहानियां शामिल हैं जहां लोग फुटबॉल के माध्यम से बदलाव ला रहे हैं। इनमें से एक कहानी लैबिन गुरुंग की है जो 1990 के दशक के मध्य में नेपाल से छात्र के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए थे। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी सिडनी में सागरमाथा फुटबॉल क्लब की स्थापना में मदद की ताकि ऑस्ट्रेलिया में नए आए नेपाली समुदाय को जुड़ाव और अपनापन मिल सके।
2: We try to accommodate them. We help them in finding jobs. We try to keep them away from being lonely or being isolated from home. Through football, we try and reconnect them with the society.
1: समय के साथ इस क्लब ने समुदाय की एक गंभीर समस्या पर भी ध्यान देना शुरू किया, जुए की लत यानी गैम्बलिंग, खासकर नए आए पुरुषों में।
2: When we have someone who is suffering from a gambling problem in our club, we take it very seriously and we try to take it professionally as well. We try not to let other members know about his problem.
1: सिडनी के इनर वेस्ट में फुटबॉल ने पहचान और समुदाय को जोड़ने का भी काम किया है। 1985 में एलिसन टॉड और ट्रेसी एटकिंसन ने फ्लाइंग बैट्स फुटबॉल क्लब की स्थापना में मदद की। वे बताती हैं कि इस क्लब की शुरुआत केवल फिट रहने की चाह से शुरू हुई थी।
3: We decided that we'd like to do some sort of activity to keep ourselves healthy. We thought about why don't we do soccer?
1: आज फ्लाइंग बैट्स को दुनिया का सबसे बड़ा LGBTQIA+ वुमेन्स और नॉन बाइनरी फुटबॉल क्लब माना जाता है। कुछ लोगों के लिए फुटबॉल पहचान और प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। अलीरा टोबी जो क्वींसलैंड में इप्सविच के कानुलो और गांगुलू समुदाय की एक वर्गित महिला हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उच्चतर पर फुटबॉल खेला है और अब नई पीढ़ी के लिए रास्ते बना रही हैं।
4: I think the closest thing for me was Kathy Freeman, which I mean probably sounds so cliche, but you know, I guess being an indigenous girl growing up, there wasn't many people that looked like me on television.
1: वर्तमान में वे जॉन मोरियार्टी फुटबॉल के साथ काम करती हैं, जहां हर हफ्ते लगभग 5,000 बच्चों के लिए फुटबॉल और वेलनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं।
4: If there's representation and there's opportunity and there's pathways, that really does open the door and change perspectives.
1: फुटबॉल शरणार्थियों यानी रेफ्यूजीज के लिए भी नई शुरुआत का जरिया बना है। सुलेमान जांडिनान जो एक यजीदी रेफ्यूजी हैं और अब क्वींसलैंड की शीर्ष मेंस और वुमेन्स स्टेट लीग में रेफरी हैं, मात्र 12 वर्ष के थे जब उनके समुदाय पर आईसिस ने हमला किया था।
5: They destroyed everywhere. They killed thousands of people. They took me and 30 people from my family members.
1: ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उन्होंने फुटबॉल के जरिए एक नई दिशा पाई और अब वे अन्य शरणार्थी परिवारों की मदद करते हैं।
5: I want to show them that you have help. Like you can reach if you need help, and not just myself. There are many other people like me and better than me available and helping our community.
1: अफगान फुटबॉलर फातिमा यूसुफी जो 2021 में काबुल से भागकर आईं, अब अफगान विमेंस यूनाइटेड के लिए खेलती हैं।
6: We can give that hope for all those girls who are in Afghanistan and thinking like, you know, nothing will change, but there will be a hope, and that's our message always.
1: ये 5 कहानियां SBS ऑडियो की ब्यूटीफुल गेम चेंजर सीरीज से है जो दर्शाती हैं कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुड़ाव, पहचान और इन सब से आगे बदलाव का माध्यम है। इस पूरी सीरीज को देखने और सुनने के लिए sbs.com.au/beautifulgamechangers पर जाएं या SBS On Demand पर देखें। इसके अलावा ताज़ा विश्व कप अपडेट्स के लिए SBS News Headlines सुनते रहें। SBS News

0: उसके लिए साहिल मक्कर और पीटर थियोडोसियो की इस खबर को SBS हिंदी में आपके लिए लेकर आए हव्या पांडे।
1: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और आज के शो में हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि बड़े शहरों की तो रौनक अपनी होती है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन रीजनल एरियाज़ का भी जो यूनिकनेस है, जो खूबसूरती है, उसकी भी एक अलग बात होती है। और हाल ही में मुझे मौका मिला हॉर्शैम और माउंट गैम्बियर जैसी जगह देखने का, तो यही सवाल आपसे था कि आपको ऐसे कौन सी रीजनल एरिया बहुत पसंद है या आप देखना चाहते हैं। और हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं। क्यूरी लिखती हैं कि मुझे विक्टोरिया में बैलराट बहुत पसंद है। और एक और मैसेज आया है जिसमें ये लिखा गया है कि वन ऑफ़ द बेस्ट लोकेशन इन विक्टोरिया इज़ ब्राइट। आई वॉज देयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल और वहाँ के जो पेड़ों के जो रंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, और बड़ा ही खूबसूरत होता है। और एक ऑटम सीज़न में और इसको देखना तो बनता है। ये मैसेज हमें भेजा है राज मेहरा ने मेलबर्न से। तो आप भी बताइए 0439-799-767 पर कि आपको ऐसी कौन सी रीजनल एरिया पसंद है। और आई हैव बीन लकी कि कुछ समय ही हुआ मुझे ऑस्ट्रेलिया मूव करके, लेकिन ब्राइट शायद वो पहली जगह थी राजी जहाँ पे मैं गया था। और बैलराट में एक्टिविटीज़ करने को बहुत हैं, तो आपके पास वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बैलराट में, और उसके अलावा भी सॉवरन हिल और क्रिस्टा कैसल और काफ़ी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं। तो 0439-799-767 हमारा नंबर है, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। मैं आपको मिलता हूं इस एड ब्रेक के बाद। सुनते रहिए SBS हिंदी।
2: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
3: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
4: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां, SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 बजे SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर।
5: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
6: SBS Audio
7: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
8: यही ज्यादा दिया, चुनबा हाल में
9: SBS Chill, Chill.
10: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है
13: Far from the partisan politics.
14: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
15: sbs.com.au/audio।
1: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और अब आगे बढ़ते हैं हमारे शो की अगली रिपोर्ट की तरफ। कल आपने हमारे शो में सुना था नस्लीय भेदभाव आयुक्त यानी रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सेवरमन के साथ बातचीत का पहला भाग, और आज हम आपके लिए उसी चर्चा का दूसरा भाग लेकर आए हैं जिसमें ऑनलाइन नफरत, गलत जानकारी और सामाजिक विभाजन जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी है। आइए सुनते हैं प्रीति जब्बल की ये रिपोर्ट।
16: ऑस्ट्रेलिया के रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवरमन के साथ मेरी बातचीत के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। अब तक हमने बात की कि मार्च 2024 में ये जिम्मेदारी संभालने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा, खासकर ऐसे दौर में जब ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में काफी बहस और बदलाव देखने को मिले हैं। आज के सेगमेंट में

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: पूरी दुनिया की कहानियों का एक संसार SBS वर्ल्ड मूवीज पर देखिए सातों दिन 24 घंटे चैनल 32 पर मुफ्त या SBS ऑन डिमांड पर स्ट्रीम करें।
2: SBS ऑडियो ऐप आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है। SBS ऑडियो ऐप एकदम मुफ्त है, इसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें।
1: SBS वर्ल्ड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
3: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए, ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
4: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया गाने का, लेकिन गाने से पहले एक मैसेज जो आया है वो पढ़ देते हैं। हमने सवाल पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया की वो कौन सी ऑफ बीट लोकेशन है या फिर कोई ऐसा रीजनल एरिया जो आपको बड़ा पसंद है घूमने में, और कई लोगों ने मैसेज किया कि ब्राइट है और बैलराट है। और एक नया मैसेज आया है रीता दुआ का, वो डैंडेनोंग नॉर्थ से। वो कहती हैं कि आई लव टू गो टू ग्रैम्पियंस, आई लाइक द लुकआउट्स देयर। ये जगह है जो मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन हाँ मन जरूर है और इसे भी लिस्ट में लिखा जाएगा। आप बताइए आपकी वो कौन सी फेवरेट रीजनल एरिया या ऑफ बीट लोकेशन है जो आप देख चुके हैं या देखना चाहेंगे। 04397997667 हमारा नंबर है और अपना नाम जरूर लिख के भेजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हो गया है गाने का। गाना सुनेंगे, वापस आएंगे, कुछ रिपोर्ट और कुछ गाने। सुनते रहिए SBS हिंदी।

0: SBS हिंदी पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मैसेज आया है जफर जी का, वो लिखते हैं कि होल ऑस्ट्रेलिया इज़ ब्यूटीफुल बट आई लाइक हैमिल्टन आइलैंड, और ये जगह क्वींसलैंड में है, और वो लिखते हैं कि वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई मोटर कार्स नहीं है। और मेरा सजेशन है कि जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, अगर मौका मिले तो ये जगह ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके रिकमेंडेशन का। 04397997667 हमारा नंबर है, और हम आज पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ऑफ बीट लोकेशन, कोई रीजनल एरिया जो आपको बड़ा पसंद है, घूम चुके हैं या घूमने जाना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर लिखकर बताएं, और अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा। 04397997667 हमारा नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे जुड़ी ज़रूरी बातें क्या हैं और क्या क्या आपको जानना चाहिए वो ख़रीदने से पहले, आइए जानते हैं वैशाली जैन की इस रिपोर्ट में।
1: क्या हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव और अनिश्चितता का असर आप भी महसूस कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है और सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं भी इस बदलाव को गति दे रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में ड्राइवरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना कितना व्यावहारिक है? नमस्कार, मैं हूँ वैशाली जैन और ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की मिनी सीरीज फ्यूल इन फोकस के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव के बीच इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी ऑस्ट्रेलिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में बिकने वाले हर 6 वाहन में लगभग एक इलेक्ट्रिक वाहन था। हुसैन दिया स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में परिवहन प्रौद्योगिकी और सतत विकास यानी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के प्रोफेसर हैं। वे कहते हैं कि ईवी खरीदने की शुरुआती लागत अभी भी पेट्रोल और डीजल कारों की तुलना में अधिक है, हालांकि जैसे जैसे इनकी मांग और विकल्प बढ़े हैं, उनकी कीमतों में भी कमी आई है।
2: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
1: अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अपने राज्य या क्षेत्र की सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी जरूर लें। वेतन पैकेजिंग यानी सैलरी पैकेजिंग व्यवस्था में शामिल कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन लीज पर लेने पर टैक्स छूट का लाभ भी मिल सकता है। एलेक्स फॉरेस्ट रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वाहन और ईंधन विभाग के प्रबंधक हैं। वे इस बारे में विस्तार से बताते हैं।
3: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a 5-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
1: पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन खर्च काफी कम होता है। अनुमान है कि ईवी चालक ईंधन पर सालाना 70% तक और सर्विसिंग और रखरखाव पर लगभग 40% तक बचत कर सकते हैं। हुसैन रिया बताते हैं कि व्यावहारिक रूप से इसका क्या अर्थ है और ये बचत वाहन मालिकों के लिए कैसे फायदेमंद साबित होती है।
2: इलेक्ट्रिसिटी इज मच चीपर देन पेट्रोल पर किलोमीटर। वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन इंपोर्टिंग इट लाइक वी डू विद पेट्रोल। And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
1: हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि यदि आप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का उपयोग करते हैं, तो बचत कुछ कम हो सकती है। इसकी वजह ये है कि सार्वजनिक चार्जरों पर प्रति किलोवाट घंटा

0: बिजली की लागत आमतौर पर घर पर चार्ज करने की तुलना में अधिक होती है। तो फिर सवाल ये है कि मौजूदा बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज कितनी है और क्या ये रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पर्याप्त है?
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: यदि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आपको समर्पित ईवी चार्जर लगवाने के लिए अपनी स्ट्रेटा या बिल्डिंग प्रबंधन संस्था से अनुमति लेनी पड़ सकती है। हालांकि एलेक्स फॉरेस्ट का कहना है कि कई ड्राइवरों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को घर के सामान्य बिजली सॉकेट में प्लग करके चार्ज करना ही पर्याप्त होता है।
2: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: ऑस्ट्रेलिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यापक उपयोग अभी दो दशक से भी कम समय से हो रहा है, इसलिए इनके सेकेंड हैंड बाजार का विकास अभी शुरुआती दौर में है। फिर भी पिछले कुछ महीनों में इस्तेमाल किए गए ईवी के प्रति उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ा है और उनकी रीसेल वैल्यू अब कई मामलों में पेट्रोल वाहनों के लगभग बराबर पहुँच गई है। और किसी भी नए वाहन की तरह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय बिक्री के बाद मिलने वाली सहायता यानी आफ्टर सेल सपोर्ट और सर्विसिंग सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विचार कर रहे हैं, उन्हें बैटरी की वारंटी की शर्तों की भी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का ईवी बाजार अब काफी प्रतिस्पर्धी हो गया है, यानी कॉम्पिटिटिव हो गया है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। एलेक्स फॉरेस्ट इस पर आगे चर्चा करते हैं।
2: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
0: ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को SBS न्यूज से आपके लिए प्रस्तुत किया ज़ोई थॉमडू और SBS हिंदी से वृषाली जैन ने। इस अंश में दी गई जानकारी सामान्य है, अपनी निजी परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।
3: SBS हिंदी पर एक बार फिर वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं नबील और अभी आपने सुनी एक रिपोर्ट ईवी से जुड़ी। अगर आप भी कोई ईवी खरीदना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट में उसके से जुड़ी कुछ जानकारियां थी, जो इसका पूरा पॉडकास्ट आप हमारी वेबसाइट पर सुन सकते हैं sbs.com.au/hindi। और चलिए अब वक्त हो गया है एक गाने का, गाना सुनते हैं, फिर एड ब्रेक और एक आखिरी रिपोर्ट जिसमें फैसल फरीद आज फिर लेकर आएंगे एक प्रेरणादायक कहानी इंडिया से। बने रहिए SBS हिंदी पर।

0: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: SBS, आपके तैयार होते ही तैयार है. Alexa, Google Home या Apple Smart Speaker के साथ जुड़े रहना आसान है. सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें. बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट. SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए.
2: डेडलाइन पर दुनिया भर के लोग और कहानियां. SBS का पुरस्कार विजेता वृत्त चित्र शो देखिए डेडलाइन मंगलवार 9:30 SBS पर और किसी भी समय SBS ऑन डिमांड पर.
3: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS on demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
4: SBS Kickoff.
5: A new music station celebrating football anthems from around the world.
6: It's time for Africa.
4: It's live now.
5: On DAB Radio, the SBS audio app.
6: We got the game
4: on. Online and SBS On Demand.
7: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें. ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर

0: Hits from Home.
1: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: लोगों में जागरूकता नहीं है। इन्हीं सब के बीच बेंगलुरु में एक छात्र आदित्य के पेट डॉग जिमी की मृत्यु ब्लड की कमी की वजह से हो जाती है। समय पर ब्लड की उपलब्धता नहीं हो पाई। आदित्य को इस बात से बहुत दुख हुआ और साथ में उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये एनिमल्स को जब भी आवश्यकता हो ब्लड उपलब्ध कराया जा सके। आदित्य अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इन्होंने एक वेबसाइट बनाई bloodforpet.com जिसमें लोग अपने पेट डॉग की ब्लड की आवश्यकता के अनुसार संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने लोगों से अपने पेट डॉग से ब्लड डोनेट करवाने की भी मुहिम चलाई। लोग जुड़ते गए। बेंगलोर से शुरू हुई ये कहानी भारत के कई शहरों दिल्ली गुवाहाटी मुंबई जैसे शहरों में पहुंच गई। आदित्य ने हर शहर के लोगों का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया। इस प्रयास से आदित्य जो अभी स्वयं एक छात्र हैं उन्होंने 500 डॉग्स के लिए ब्लड की व्यवस्था की है। आदित्य अपनी इस पहल के बारे में बताते हैं।
3: हाँ, मेरा नाम तो आदित्य है। मैं पहले से बेंगलोर में थे। मैं 8th स्टैंडर्ड में मेरा एक डॉग था, उसका नाम जिमी था। वो मर गया क्योंकि उसका ब्लड ना आया टाइम पे, इसलिए हम सोचा मैं सोचा ये शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद एक वेबसाइट की शुरू किया और उसके बाद वो ही थोड़ा बड़ा बड़ा हो लिया। और उसके बाद हम ही एक वेबसाइट से व्हाट्सएप ग्रुप हुआ और उधर से बहुत ज़्यादा डॉग्स को हेल्प मिलने का शुरू हुआ। और उसके बाद हम लाइक वी स्टार्टेड हेल्पिंग आवर डॉग ओनर्स एंड कनेक्टिंग देम विद अदर डॉग ओनर्स हु रिक्वायर्ड ब्लड। उधर से बहुत ज़्यादा डॉग्स को हेल्प मिला। मैं तो अभी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ अशोका यूनिवर्सिटी में, एंड मैं मेरा सेकेंड ईयर डिग्री में है। और ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ के बारे में और हेल्प करने के लिए बहुत हाँ रेडी हूँ। इसीलिए मैं ये शुरू किया क्योंकि कोई डॉग ने मरना नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिला।
2: भारत में कई जगह पर ऐसे संस्थान हैं जो एनिमल्स के लिए ब्लड उपलब्ध कराते हैं। आदित्य कोई ब्लड बैंक नहीं चलाते हैं, वो बस एक माध्यम बन गए हैं कि लोगों के लिए सहारा हो गया है। क्योंकि अधिकांश लोग तो जान भी नहीं पाते हैं कि एनिमल के ब्लड डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन के लिए कहाँ जाएं।
3: बिल्कुल, हमारा तो एक तो क्लियर है, हम तो ब्लड बैंक नहीं है, हम एक डॉग कम्युनिटी है। मैं वो कम्युनिटी को मदद करते कि कैसे वो कोई आता है मुझको ब्लड चाहिए बोलकर, मैं उसको दूसरे डॉग ओनर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और उसके साथ वही वो ब्लड डोनेशन का बात करते हैं और डॉक्टर के साथ जाते हैं और उधर करते हैं। ये तो पूरा नॉन प्रॉफिट है, वो लोग खुद आप उसके मर्जी से ही करते हैं। ये कोई भी ये स्टोरेज फैसिलिटी कुछ नहीं है अभी, और पूरा एक कम्युनिटी एफर्ट जैसा है।
2: अब एनिमल में ब्लड डोनेशन को लेकर भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। एनिमल्स के भी ब्लड ग्रुप होते हैं लेकिन कुछ अलग तरह के। सबसे बड़ी बात इसमें ब्लड डोनेशन में ब्रीड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक जर्मन शेफर्ड भी ब्लड डोनेट कर सकता है और वो ब्लड किसी भी डॉग को उसके ब्लड ग्रुप मैचिंग के अनुसार चढ़ाया जा सकता है। छोटा डॉग भी ब्लड डोनेट कर सकता है और उसका वो ब्लड किसी बड़े डॉग को चढ़ाया जा सकता है। कमजोरी आना, ये सब भ्रांतियां हैं।
3: ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना। हम जैसे ह्यूमंस भी ब्लड डोनेट करते हैं, बहुत ज्यादा लोग करते हैं ना ब्लड डोनेशन इधर से उधर तक। हाँ, वो क्या होता है, हम एक मिनट दो मिनट के लिए थोड़ा थक लाइक वी फील लिटिल टायर्ड फॉर लाइक टू मिनट्स, पर उसके बाद हम फिर से ठीक हो जाते हैं ना। ऐसे ही होता है डॉग्स पे भी। और एक और बात है, डॉग्स में ब्लड ग्रुप कैसे ह्यूमंस में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए नेगेटिव जैसे है, उस डॉग्स में भी ऐसी है डी ए नेगेटिव डी ए पॉजिटिव के नाम से। और उधर एक और एडवांटेज है, कोई भी डॉग डोनेट कर सकता है। ये नहीं है तो जर्मन शेपर्ड होगा तो जर्मन शेपर्ड

0: ही दे सकते हैं ब्लड, ऐसे नहीं है। एक पराया डॉग, लोकल डॉग, वो भी डोनेट कर सकते हैं जर्मन शेफर्ड के, और एक पोमरेनियन भी डोनेट कर सकते हैं जर्मन शेफर्ड के। वो ब्रीड का कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें। वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, मैं बहुत बार सुन लिया है कि हमारा डॉग तो डॉलमेशन है, कैसे एक जर्मन शेफर्ड डोनेट कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं है। और एक और बात है, तो ये तो बहुत नोबल कॉज है ना, कोई डॉग्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑफ कोर्स फीवर वो सब हो और या प्रेग्नेंट हो तो डॉग ब्लड नहीं डोनेट कर सकते, लेकिन ह्यूमंस में कैसे होते हैं ऐसे ही। लेकिन दूसरी टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं डॉग्स को। थोड़ा ब्लड से ही बहुत रिकवरी होता है, टिक फीवर जैसा प्रॉब्लम्स हुआ तो थोड़ा ही ब्लड चाहिए, 200 या 100 mm ऐसे, और ml। और ये बहुत कम होता है ब्लड, ह्यूमंस में हम ऑलमोस्ट 500 ml तक डोनेट करते हैं ब्लड, लेकिन डॉग्स में बहुत कम होता है, और कम से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी होता है डॉग्स पे। तो ये मिसकंसेप्शंस बहुत है, कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा वेबसाइट में भी हम लिखा है ये ऐसे नहीं है, मतलब उसके बारे में, और हम इंटरनेट में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में।
1: आदित्य की पहल डॉग लवर्स के लिए एक वरदान है। 500 से अधिक डॉग्स को ये ब्लड उपलब्ध करा चुके हैं। एक बार तो सिर्फ 5 मिनट में ब्लड उपलब्ध कराकर इन्होंने दिखा दिया, जिससे एक डॉग की जान बच सकी। आदित्य अपने अनुभव बताते हैं।
0: ऑफ कोर्स, तो हाँ, सो सिंस वी आर अ डॉग कम्युनिटी, वी हैव आई डोंट नो हाउ मेनी कितना यूनिट्स ऑफ ब्लड डोनेट किया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 डॉग्स को हेल्प मिला है हमारा कम्युनिटी से। और हम थोड़ा एक्सपैंड भी हुआ है, सिर्फ बैंगलोर में शुरू हुआ था, और उसके बाद मैं अभी दिल्ली में पढ़ रहे हूँ, इसीलिए वो दिल्ली का ग्रुप है, बॉम्बे का एक ग्रुप है, गुवाहाटी का है, भुवनेश्वर में है, बहुत ज़्यादा इंडियन सिटीज़ में एक्सपैंड हुआ है ये ऑपरेशन। सिर्फ ये कम्युनिटी एफर्ट है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। सो डॉग ओनर्स वो ही ये ऑपरेशन को हेल्प करता है, कैसे है वो कनेक्ट करते हैं, वो ही हेल्प करते हैं दूसरी डॉग डॉग वो ही हेल्प करते हैं। हमारा तो सिर्फ उसको वो मैड करने का, लाइक दैट्स द आर ओनली जॉब। इट्स लाइक थैंक्स टू ऑल द डॉग ओनर्स हु हेल्प्ड अस टिल नाउ, एंड वन ऑफ देम हु सम टाइम हेल्प ही करता है, दैट्स वन थिंग। एंड अनदर इज दैट बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है, बहुत लाइक द कंडीशन बहुत खराब होता है, कैसे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इट विल बी इन अनफॉर्चुनेटली इन द एंड स्टेजेस, एंड दे वुड कॉल अस, एंड वो बोलते हैं अभी क्या कर सकते हैं, हमारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स। और हम भी है बोलते हैं, वो कम्युनिटी है हमारा साथ है, लेकिन हम बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे, कॉल करेंगे, वो सब करेंगे। लेकिन एक बार ऐसे इंस्टेंस हुआ था, वो बोल रहे थे 3 घंटे में चाहिए ब्लड, बहुत डॉग का तबीयत बहुत ठीक नहीं है, अभी टिक फीवर हुआ है, बहुत सीरियस था, अभी ब्लड चाहिए हम। ये बैंगलोर का था 1 साल पहले, और हम भी बोला हम ट्राई कर सकते हैं, कितना मदद कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन गारंटी, लेकिन लाइक लिटरली इट वॉज अ मिरेकल दैट हम एक मैसेज डाल दिया प्लीज प्लीज करके मैं, और ऑलमोस्ट अराउंड 5-6 रेस्पॉन्स हमको आया वो डॉग को हेल्प करने के लिए, लाइक इन 500 टाइम्स। एंड दैट्स वेन हमको भी फील हुआ या दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ डिफरेंस, एंड वी सॉ दैट लाइक इट ओनर्स विलिंग टू हेल्प इन सच अ शॉर्ट टाइम, एंड इन दिस लाइक इतना फास्ट पेस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा टाइम, इतना ज्यादा मैसेजेस आते हैं ग्रुप में, बहुत ज्यादा लोग पढ़ ही नहीं थे, लेकिन उस टाइम लाइक टू मेनी पीपल हेल्प्ड आउट, दे रेड द मैसेज, दे विलिंग टू हेल्प आउट, एंड वो डॉग को मिला ब्लड, और अभी वो डॉग ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा डॉग था, सिर्फ 8 मंथ्स का डॉग था, लाइक इट वॉजेंट अ वेरी ओल्ड डॉग, सो लाइक इतना ज्यादा मिला, और इट वॉज अ वेरी हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हेन वी फेल्ट वी आर एक्चुअली लाइक नॉट जस्ट अस, द एंटायर कम्युनिटी इज पुटिंग एन एफर्ट, एंड वी कैन सी सच वंडरफुल रिजल्ट।
1: पशु बेजुबान होते हैं, आप पर निर्भर होते हैं, उनकी बीमारी का भी दायित्व हमारा है। ऐसे में आदित्य की यह पहल वाकई सराहनीय है। लखनऊ से फैसल फरीद।
2: ایس بی ایس ہندی پر, میں ہوں نبیل, اور بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ شو میں بنے رہنے کے لیے. آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں تو میں بس آپ کو ایک گانے کے ساتھ چھوڑ جاؤں گا, اور اس وعدے کے ساتھ کہ ایک اور شام پھر سے ملیں گے ایک نئے شو میں, اور بنے رہیے ایس بی ایس ہندی کے ساتھ.

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा

जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। अमीरों वाला ख्वाब चाटो इनकी धूल, दिखने में सुंदर ये कांटे वाले फूल।

गरीब चुप क्योंकि अमीरों की इजी बेल, अमीर है खुश क्योंकि गरीबों की लगी सेल। गलती है किसकी और बदले में कौन जाता जेल, पन्ना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल। मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेट फुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल, अकेला ही करूंगा मैं सारा वेग पुल। याद रखना I'm the one and only big boy।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर

0: ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: SBS South Asian।

लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।